चरण सिंह जी नानक सर कुटिया पटियाला वाले अते समूह संगतां दे सहयोग नाल अज मिति 21 तरीक तो 1 जुलाई तक

चक्र चिहिन अर बरण जात अर पात नहन जेहे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहान गणिजै त्रिपवन महीप सुर नर असुर

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पहरव करही पंच राग नी संग उच रही प्रथम पहरवी।

चंद्र बिंब मंगलन सुहाए, सरस बान औ आहे विनोदा, गावे सरस बसंत कमोदा। अष्टपुत्र मैं

सुनी सुनी नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभु पेखने काचाओ प्रभु पेखने काचाओ

अकार हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपाद हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि अकर्म हरि अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करे उई करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूर से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न वेद चारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फिर भय रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के वेद और पुराण के ते समृद्ध समूहन के होए होए बिताए है। मोन दी मदार कितने असुनि कुमार कितने अंसा अवतार कितने काल बस भय है। पीरे और पिकांबर कितने गाने न परत ए ते भूमि ही तो एक फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जाति ब्रह्म जारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही किशाया कई गोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से महीब और दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिजदे करे अनेक तोप जी कपट फेस बोसती अनेक दानी वावत है। शीस को गाह भयो मल्ल जो पे काढ़त अनेक दंड सो दोनों दंडौत अस टांग अथ तीस को कह भयो रुकी जो पे डार्यो रहो उर्ध मुख मान तेना मुंड ने हो रायो आद ईस को कामना अधीन सदा दामना प्रवीन एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीस को। शीस पट कत जाग कान में खजूर धस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आंख को चरैया फल फूल को बचय सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सुमाटी को भचैया बोल पूछ लीज जो कुसौ कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे भेट पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है। वाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश विचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न उजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक स्वांगी कहूँ जोगी अब रागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई कहूँ पौन हारी कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी होई के लोगन भ्रमावई कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पांच बार की दर पुकार पर शीतकाल कुंजर उगत अनेक दा पुकार ही कहा भय जो पे कल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोर टाक।

भावना विहीन गस ज्ञान को विचार ही। ताप के सहित जो बिपाई अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के कियत जो बिपायत अजाप देव पूतना सदीव तुही तुही उचरत है। नभ के उड़त जो पे नारायण पाइयत अनल आकाश मंझी डोल बो करत है। आग में जरत गत राण की परत कर पता।

रहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मान वो एक ही के सेव सब ही को गुरु देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान वो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पे अनेको भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के।

आग ते कनु का गोड आग उठे न्यारे न्यारे होय के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। केते गछ माछ केते उन को करत भछ, केते अच वच हो सपच उड़ जाहेंगे। केते नब बीच अच पच को करेंगे भज, के तक प्रताच हो बचाए खाए जाहेंगे। जल कहाँ थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे। तेज ज्यों तेज मैं तेज जैसे तेज लीन, ताही तय उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत केत रोवत मरत, केत जल में डुबत केत आग में जरत है। केत गंग बासी केत मदीना मक्का निवासी, के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत केत भूम में गड़त, केत सुअ पे चढ़त केत दुख को भरत है। गैन में उड़त केत जल में रहत, केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे, दानव बड़े बोध हारे, बोधक प्रबोध हारे, जापसी घास हारे, चंदन लगाए हारे, चुआचार पूज हारे, बाहन चढ़ाए हारे, लापसी गाह हारे, गोरन मनाए हारे, मड़ी मटली हारे, वीतन लगाए हारे, छापसी गाए हारे, गंधर्व बजाए हारे, किन्नर सब पच हारे, पंडित।

पाते न सत्र न मित्र सो भूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग भेखं न सतरंग न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जो नीय छयाद अद्वय जो हं न जन्मं न मरणं न वरणं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न दादंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न वर्मं।

नेहं नगेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न सर्वं न साके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं सरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे। कहूं कंज के मंज के भरम भूले, कहूं रंग के राज के धर्म भूलूले, कहूं देश के वेश के धर्म धामे, कहूं राज के साज के

कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भरम माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित्र रूपं कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपं कहूँ नेह गृहं कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैद बाने कहूँ जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साध के तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमुखी भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ट के ऋष पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ पुराण के गीत गावे कहूँ शुद्ध शिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल।

बुद्ध्यागं कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देव बानी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारण कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मलेज भाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छैल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजं दे राजाधिकारी।

मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय द्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल व्याल कट्यो नांग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन शीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन

भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए, अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्व साथ है, अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज वानी है, सदीव सिद्ध सुध दा प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है न रोग राग रेख है, अधोक ताग तक है अभूत ब्रह्म भेक है, न तात मात जात है न पाद चिहन वरण है, अदेक सेक भेक है सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्व भरण है, जिमी जमान के विखे सदीव करम भरम है, अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मान।

गंज आद देव है कहो सो कैसे पाई है। जिमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है, न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है। नहान है न बान है समान रूप जानी है, मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानी है। न देह है न गे है न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है। न अंग है न रंग है न संग है न साथ है, न दोख है न दाग है न द्वैग है न देह है। न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है, न मान है न मौत है न साक है न संग है। न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है, न चोर है न साव है न साह को कुमार है। न नेह है न गे है न देह को बनाओ है, न छल है न छिद्र है न।

गंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न साथ है, प्रया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न घाम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैग है, न भेक है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अभेक है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेक है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत है, अनंत तेज जानिए, अभूम बेज है, सदा छिज

है, न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को लाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा से दसपति तपस्पति वनस्पति जपस सदा, अगस्त आद जे बटे तपस्तपि विशेखिये, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखिये, अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र शत्रु सनेह जानिए, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

सनक औसन के सुनंदन पावही नासेव। जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्गा पार, नेत नेत पुकार ही शिव सक्र मुखचार। सर्व सबत बतार के तर जाप ही जह जाप, आद देव गाद तेजा नाद मूरत ताप। जंत्र मंत्र न आवई गर तंत्र मंत्र न कीन, सर्व ठौर रहियो विराज धीराज राज प्रवीण। जछ गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रियन माहे, वैसनंके बिखे विराज सूत्र भी वह नाहे। गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म शेख स्वरूप, रात दिवस न मध उर्द न भूमा काश अनूप। जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन, तीर्थ जात्रण देव पूजा गोर के न अधीन। सर्व सबत बतार के तर जानिए जह जोत, शेष नाम सहंस फन नहिनेत पूरन होत। सोद सोद हटे सफा सुर विरोध दान सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाए किन्नर करब। पढ़त पढ़त थके महागम गणत गढ़ अनंत, हार हार कहियो सभु मिल नाम नाम दुरंत। भेद भेद न पायो लखियो न सेवक देव, देव दानो मूड मानो जछ न जन जेब। भूत बाप भवान।

चक्र चिहन ना वर्ण जाको जात पात ना फेक रूप रेख ना रंग जाको राग रूप ना रंग सर्व लायक सर्व खायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आद देव पाल दीन बंध प्रवीण।

दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख ब्रह्माथ दुष्ट हर्ता सृष्ट कर्ता जगत मय जह गाथ भूत भव भविख भवान प्रमाण देव गंज आद अंत अनाथ श्रीपद परम पुरख अभंज धर्म के अनकरम चेत कीन तौन पसार देव देव गंधर्व किन्नर।

हार हार थके सब नहीं पाइये दह पार। नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार, सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

कहाँ रंग राजा कवन हरग शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत् मोह तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहाँ कर्म को कर

गण ध्वजा बनन गण फणि फुंकार जो ध्वजते सरधार विवर खंड दोष्ट प्रकर खंड पोष्ट प्रहर खंड दोष्ट मथे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन भूम आकाश लोर्दे दामरी प्रहासन सुषभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन युद्ध प्रमाचन हृदय नराचन धर्म वृते श्रोणंत अचिंती अनल विमंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय हो सी महासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अघ ओघ निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ उपारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण सहस्र प्रहारण साध मते सहति सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलन जय जय हो सी महासुर मर्दन भूमा काश पताल जलन चाचर चमकारन चुर हारण धूम धुंकारण द्रप मथे धाड़ी प्रतंते जोग जयंते मनुज मथ

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भेष विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुन नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो सी सब ठार निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटे निवारण धम धारण तेज प्रकर खण तुंद तबे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती आद अनाद अगाद अछे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जीवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकर खण आद अनिल अगाद अभे चंचला जखंगी।

होशिय रक्ता सुर खंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज बिलोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे शुभ सरनासे शुभ्र सुभासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रसंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आद नाद अगाधर्धन घंट का विराजे रुण झुण भाजे ब्रह्म भाजे सुनत सुरंग कोकिल सुन लाजे किल विग भाजे सुख उपराजे मध उरंग दुर्जन दल तज्जे मंतन रिज्जे सब न भज्जे रोहरणंग जय जय होशी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रतन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर विते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जाक विदुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंति शत्रु मथंति दुष्ट व्रताहन गाढ़ मते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अगाध गते खत्रियान खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृढ़लाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण

प्रकार खंड सर्वर वर खंड दुष्ट वृद्धर खंड पितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत बनाहन गुड़ गते जय जय हो शिव महासुर मर्दन आद अनाद अगाध प्रति दुख दुख प्रबच्छन सेव करच्छन संत प्रतच्छन शुद्ध

डुकडुके दमंके बाघ भवंके भुजाफरंके शुद्ध गते जय जय हो से माखासुर मर्दन आद जुगाद अनाध मते चछरासुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दोच प्रचंडन खंड अखंड।

तन भय अनंत तव कहो जथामत त्रैण तंत। करता करीम कादर कृपाल अद्वय भूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोह रहत जिह नेत नेत सब वेद कहत। कई ऊंच नीच कीणो बनाओ सब वार पारे वंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय कै लखाए। अंछिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय अकाल अक्षय स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख।

जय रूप रेख कहे बास ताज कहे कौन भी कहे नाम तास है कवन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जे चक्र चेहन नहीं रंग रूप जे खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्धं बिरहत सिद्धं स्वरूप बुद्धं पाल जुद्धं अनूप जे रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंतन दुरंत जे नेत नेत निस्दिन उचर

अपनो कर दे कर पाप संभूहन भेटन पावे। और की बात कहा कह दो सौ सौ भेट ही के पट बीच बचावे। जच भुजंग सो दानव देव भेव तुम सब ही कर ध्यावे। भूम आकाश पताल रसातल जच भुजंग सभ सिर न्यावे। पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे। खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हूँ मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो। पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनाद सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जह को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद नृपान सब पचहारे। वेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न संग तिहारे। आद अनाद अगाद अवेख अद्वेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीर्थ कोट किए स्नान दिए बहुदान।

बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल माह काल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमालय धैव गोर गर देजी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना के तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी गुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछान निज काम है। मरहटा मंगेली तेरे मन सो तपस्या करे दृढ़ वह तिरंगी पहचाने धर्म दाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मचीन के शीस ने आवे देव तिथे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें दोहे धायो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है।

काल हूं के काल हैं के सत्रण के साल हैं के मित्रन को बोगत हैं के वृद्धता की बासी हैं जो कहूं को जंत्र हैं के तेज हूं को तंत्र हैं के मोहनी को मंत्र हैं के पूर्ण प्रकाशी हैं रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सार है ज्ञान को बचैया है मान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के श्रेहन नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पार अवार हूं को बार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधा पूर्वी न पार पावे असत अनास है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेवनात अद्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भुजैया है मुहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुव छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाछ कैसी छत्रानेर छपाकार कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंसनी से सिहारो महीरा सिंह सनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोलसी सुरंगाबाद नीके रही झूल के चंपासी चंदेरे कोट चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी के लाज कमाऊ गढ़ कांसी पुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा ने रहस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावत चंद्रमा सी चंद्रगीर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भखरी गंधारी गोर कखरी गुरदेजा चारी पौन के आ

गुरु गरीब निवास अंतर जान सच पातशाह जी महाराज धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी आप जी के पावन स्थान सखण दरबार दाजरी भरते हुए आप जी के भी बाणी का सत्कार करते हुए बेअंत गुरमुखा प्यारे माया हाजिर हुई सच्चे पातशाह नाम मान सके दान बख्शिश करने गुरसिखी जोड़ मुखना दे आरोपता समूह संतान मनोकामना पूर्ण करने नाम माणी नाल प्यार उचना दरबार करनी यात्रा सफल करनी।

मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रह रास सुरहा हर जिन के वड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मलै त्रपतास है मल संगत गुण प्रगास जन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए ध्रग जीवै ध्रग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जिन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महल्ला पंजवा काहे रे मंचत वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवै सैकूसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया।

तेरे चो जबडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ध्यावे हर ध्यावे तुद जी से जिन जुग मह सुख वासी से मुकत भय जिन हर ध्याया जी तिन तूटी जम की फासी जन निर्भव जिन हर निर्भव ध्याया जी तिनका भव सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करे हर पूजा जी तप तप है जप है बेनता तेरे अनेक पड़े बहु सिमृत शास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीव डियवर ना कोई तू जग जग एको सदा सदा तू एको जी तू नह चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरतै जी तू आपे करह सोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो ता भावे सोई थीसी जो तू दहे सोई हाँ पाई रहा सब तेरी तू सबनी ध्याया जिसनू कृपा करह तन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ भैले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चाले हम देखा तहडू बियले मन एक नचेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हाँ जती सती नहीं पड़िया।

तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकण को सिव गुण सुख दियो सतरण को पल मोह पद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत छींटी ते कुंचर यस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जावुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हों कब हों तुम मैं मिलत दे धर सब हों जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरालम ज्ञानत बेद भेद अर आलम नरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ

कछु भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सुदस, नरंकार का छीनत नह भव, आप आपनी बुध है जेती, बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जे रज से तज कीनी, उत्वज खान बहर रच दीनी, कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सुमट भयो संकर कैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत तुत पाता, सकल मलेच करो ऋण घाता, जे सुधज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत होए मरे, पुरख जवन पग परे तहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार धिए हैं, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला, कृपा दृष्टन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो, रिद सिद्ध घर्मो सब होई, दुष्ट छा छुए सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन्नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दलहु उबारी, सर्व ठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लहु बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अद्वज भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत

कह चौपई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

दास तिहारा, जान आपना मुझे नवाज, आप करो हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा, दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा।

सवैया धन जियो तह को जग मैं मुख ते हर चित मैं जुत बिचारे देह अनत नानत रह जस नाव चढ़ भव सागर तारे धीरज धाम बनाए एह तन बुद्ध सो दीपक ज्यों जियारे ज्ञान की बढ़नी मनो हाथ लै कातर ताकतवार बुहारे दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भाकत नेत सुरग बा सुरग बर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो एह कथा सुने अर गावे दुख पाप तह निकट न आवे बिशन भगत किए फल होई आद ब्याज छै सकै न कोई सम सत्र सैस पचावन हाड़ वधी प्रथम सुख दावन तौ प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लौले हो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सतद्रव तीर तरंग श्री भगव